0: सोचिए महीने के आखिर में जेब खाली हो और अचानक से कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, तब जो खुशी होती है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐसी ही खुशी का, हर्षोल्लास का एहसास हुआ। बुधवार और गुरुवार पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे प्रबल दावेदारों को हारता देख मानो मायूसी का अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर रोशनी की ऐसी खिड़की खुली जिसकी कल्पना बैडमिंटन के प्रकांड पंडितों ने भी नहीं की थी। जी हाँ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में भारत का एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ये पदक वुमेन्स डबल्स में हासिल किया है, एक ऐसी कैटेगरी जहां इससे पहले पदक 2011 में यानी 15 साल पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने भारत को दिलाया था। ट्रीसा ने कहा,
1: Finally this happened and obviously really happy that we converted this win into this semi-finals and getting a medal, but it's not stopping it. There is matches are coming tomorrow also. Obviously I want to thank the crowd people. I think the crowd was amazing today. That was really giving that positive vibes to us.
0: इस पदक की महक सूखे के बाद पड़ने वाली पहली बारिश जैसी इसलिए भी है क्योंकि ट्रीसा और गायत्री का ये साल मुश्किलों में कटा है। अप्रैल में ट्रेनिंग के दौरान ट्रीसा के टखने में लगी चोट के चलते ये जोड़ी ना ही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल पाई और ना ही प्रतिष्ठित उबर कप में हिस्सा ले पाई।
1: बिफोर एशियन चैंपियनशिप आई गॉट इंजर्ड 3 डेज बिफोर, दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट्स बीन सैड एंड इमोशनल एंड काइंड ऑफ मिसिंग दोस मेजर टूर्नामेंट्स।

0: थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने. स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया. वी डोंट वांट टू रिवील टू मच ऑफ द स्ट्रेटजी बट वी वर जस्ट रोटेटिंग, वी जस्ट वांटेड आवर लेग्स टू मूव.
1: पर कोर्ट साइड पर बैठे मेंटोर और गायत्री के पिता पुलेला गोपीचंद और कोच बी सुमित रेड्डी ने सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया, स्टे काम.
0: He always said like just calm down and just be in the present moment. I think that really worked today. That's the kind of advice he gave behind us.
1: दूसरे सेट में कांटे की टक्कर हुई, स्कोर 15-14 तक पहुंचा और उसके बाद गायत्री और ट्रीसा ने मानो टॉप गियर डाला. 6 पॉइंट लगातार जीतते हुए 21-15 से वो सेट अपने नाम कर लिया.
0: The crowd was so amazing. The crowd that gave us that confidence even we lost the first game also. They were in full josh that come on girls, you can do this. And I think that really helped us.
1: तीसरे सेट में चीनी जोड़ी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की. भारतीय जोड़ी 1-4 से पीछे थी और फिर 8 पॉइंट लगातार ट्रीसा और गायत्री ने लिए और अंततः इस मुकाबले को 21-13 से जीता. इस जीत पर कोच सुमित रेड्डी ने कहा,
2: मैच आज का तो बहुत अच्छा गया है, जैसा लड़कियां ने खेला हम तो बहुत ही खुश है एंड इसके साथ मेडल आ गया, आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है. दोनों बहुत ही बेहतर खेले, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग खेले, इतने हजारे लोगों के बीच में खेलना मजाक की बात नहीं है, तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस से खेले.
1: इस जीत के बाद सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो गया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल आना सुनिश्चित है. लेकिन उससे मन कहाँ भरने वाला है, तो सबके मन में एक ही सवाल है,
3: बोल आएगा
2: वो कल देखेंगे. कल का हम अभी ओपोनेंट्स का भी मैच देखना है, देख के हम ऑब्वियसली बोलेंगे हमारा प्लेयर्स को कि मोस्टली ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं. एंड आई थिंक गोपी सर ऑलरेडी मैच से पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो गोपी सर के साथ एक बार डिस्कस करने के बाद आई थिंक उसके हिसाब से सर प्लान करके बोलेंगे.
1: सेमीफाइनल में सामने होने वाली है पहली वरीयता प्राप्त चीन से ही आने वाली ल्यू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी, जिससे पहले भी ट्रीसा और गायत्री 6 बार हार चुके हैं. लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतना अब इस जोड़ी की फितरत है और इसलिए शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल का हमें बेसब्री से इंतजार है. शाम होते होते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा क्योंकि अब बारी थी बीते वर्षों में 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पदक लाने वाली सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की. ये जोड़ी भी पिछले कुछ महीनों में चोट से जूझती आई है. वही सात्विक की लंबे समय से तंग करने वाली कंधे की चोट.
4: Yeah, just managing myself. So sometimes I feel very good in the one tournament. The next day I feel very tight. The next day I feel very worse. The next day I feel like 100%. So it's kind of complicated with my shoulder. But I just need to manage myself and play.
1: हालांकि क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को सामने कई मौकों पर भारत के लिए सिरदर्द बनी चीन की लियांग और वांग की जोड़ी थी. थॉमस कप, मलेशियन ओपन, चाइना मास्टर्स, हर बार ये प्रतिद्वंद्वी भारतीय जोड़ी के आड़े आए हैं. लेकिन गड़गड़ाती तालियों के बीच और भारतीय फैंस की हौसला अफजाई के समक्ष रांकी रेड्डी और शेट्टी ने एक अच्छी शुरुआत की. पहले गेम में 18-16 से लीड भी बना ली थी लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा कि धीरे धीरे दर्शक दीर्घा से आने वाली आवाज कम होती गई और अंत में एक हताशा भरी चुप्पी में तब्दील हो गई. 18-16 से पिछड़ने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने 5 पॉइंट लगातार लेकर पहला गेम जीता और दूसरे गेम को तो एक तरफा ही बना डाला. 21-9 से जीत हासिल की और महज 36 मिनट में इस मुकाबले को 2 सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया.
4: They were quite good in the first 4 shots. Whoever controlled the first 4 shots in the first set, we are controlling it. They got confident after 1 or 2 points. So if it is rally game, it's anybody's game. It's 50-50 because both have the attack. The Chinese can attack as well. We can attack as well. But the difference was only the service and service return. They got that spin, so he got little bit confident in that towards the end. He started spinning differently rather than the first one. After second game, I think they got pretty much confident. They are everywhere, wherever we are hitting, they're just playing their game. So I think, yeah, kudos to them. But yeah, we could have put a little bit more tighter from our side. But yeah, I think we'll go back and learn what we did next.
1: हार के बाद मायूस चिराग शेट्टी ने कहा,
5: पहला गेम काफी अच्छा था. 18 तक हम लीड भी कर रहे थे. जो गेम प्लान हमने सेट किया था वो काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था. After we lost the first game, they came back a lot more harder in the second game. We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि

0: हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि देवर प्लेइंग क्वाइट अ सॉलिड गेम, अ लॉट ऑफ द पॉइंट हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज.
1: शनिवार के दिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के कोर्ट वन में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां भारतीय प्रशंसकों की नजरें गायत्री और ट्रीसा के मैच पर होंगी, तो वहीं वुमेन्स डबल्स के दूसरे सेमीफाइनल में चीन की ली और लुओ के सामने होंगी दक्षिण कोरिया से आने वाली पूर्व नंबर वन बेक और ली की जोड़ी. महिलाओं के एकल वर्ग में दो दिग्गजों के बीच मुकाबला होगा, चीन की वांग ज़ीयी के सामने होंगी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग, जिनका पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट में दबदबा कायम रहा है. यूंग कहती है कि उनका फोकस प्रतिद्वंदी पर नहीं उनके खुद पर होता है.
2: My goal is to achieve a great result any tournament. Yeah, I just focus on myself and one point at a time.
1: दूसरे सेमीफाइनल में दिखेंगी थाईलैंड से आने वाली पोर्नपावी चोचुवांग, जिनको क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला. उनके सामने जापान की अकाने यामागुची होगी. पुरुषों के सिंगल्स में चाइनीज ताइपे के चाउटिन चांग जापान के कोडाई नारोका को चुनौती देंगे, तो दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई के सामने होंगे फ्रांस के एलेक्स लानियर, जो कांस्य पदक जीतने से ही बहुत खुश हैं, लेकिन पदक का रंग बदलने के लिए भी उतने ही उत्सुक.
3: I want to change the color of the medal definitely and I'm also excited about tomorrow.
1: Producer Shahnawaz Khan aur editor Vandana ke saath Indira Gandhi Stadium se Mohammad Shahid Azmi ki khas report liye Akashvani ke liye main Darpan Tikiya.
4: Neergale idvarai உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டிகளின் அன்றாட நிகழ்வுகளின் ஒளிப்பதிவு ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் கேட்டீர்கள்.
5: நா கொஞ்சம் சீக்கிரம் நா.
6: ரஷ் ஆர் ரெயின்போ.
4: இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பிளான் வச்சிருப்பீங்க, ஏன்னா ஜென்ரலாவே வீக்கெண்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு நிறைய பிளான் இருக்கும். இன்னும் இன்னைக்கு மெட்ராஸ் டே வேற, ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ஹெரிட்டேஜ் வாக்ஸ் நடக்குது, டிபேட்ஸ் நடக்குது, கான்சர்ட் நடக்குது, சில மால்லலாம் சில ஃபங்க்ஷனே நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய குரூப்ஸ்லையுமே நீங்கள் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பீங்க மெட்ராஸ் டே அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் எங்கே இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கோட இந்நேரத்துக்கு நீங்களாம் பிளான் போட்டிருப்பீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். அந்த பிளான்லாம் வந்து செவ்வனே நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒன் ஹவர் வந்து உங்களுக்காக பியூட்டிஃபுல்லான சாங்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். எஸ், நிகழ்ச்சியோட முதல் பாடல் வேலைக்காரன் திரைப்படத்திற்காக தான் அனிருத் பாடிய பாடல் விவேகாவோட வரிகள். அனிருத்தோட மியூசிக்ல வந்துட்டே இருக்கு ஸ்டேடியம் மக்களை. இது ரெயின்போ எஃப்எம் என்ன பொலினால இங்க எல்லாமே சமதுளு.
7: ஹலோ

0: संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஸ்டம்ப்டு செஷன் 7 டெல்லி அஞ்சல்.